बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस। यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6। यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर के धुन।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर,
1: शहर का नया मैजिक, रेडियो डीएस 89.6।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक, रेडियो डीएस 89.6।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। 89.6 पे रेडियो डीएस यहां हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
0: 89.6 रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। 89.6 पे रेडियो डीएस यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस।

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभातम, सत श्री अकाल दोस्तों। वक्त हो चुका है 10 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो डियाज गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डियाज पर।

0: मैम नमस्ते।
1: नमस्ते मैम।
0: नाम क्या है आपका?
1: अंजना शर्मा।
0: अंजना जी, और कैसे हो?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हो मैम?
0: मैं तो ठीक हूँ। आज कैसे याद आ गए?
1: याद मैम यही कल ही आई थी गंगापुर।
0: याद ही कर रहे थे वैसे आपको?
1: सच्ची में?
0: सच्ची में
1: आप भी याद करते हो?
0: और क्या यार, याद नहीं कर सकते क्या? सर भी याद करते हैं यार। अंजना का फोन नहीं आता दीपा, इनकी पता नहीं नाराज है अंजना फोन से।
1: नाराज नहीं वो मैम, कल ही आई थी गंगापुर ससुराल से, अभी तो रुकूंगी, तो मैंने कि अब मैं फरमाइशें शुरू कर दूं।
0: हाँ बताओ, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मैम गाने के बोले ऐसा बनना सवरना मुबारक तुम्हें।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपके साथ।

0: जी नाम बताएं।
1: शहनाज।
0: शहनाज जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी संजय कॉलोनी।
0: बताएं शहनाज जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
1: मेरा एक सपना है।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम आपकी फरमाइश पे, बेहतरीन सा सॉन्ग रेडियो डीएस।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: मैं, मेरा नाम पायल जागर है।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: हम तुमको निगाहों में इस तरह छुपा लेंगे।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
0: थैंक यू मैम।
1: यू वेलकम।

0: नमस्ते पलक जी, चौधरी अर्ज कर रहा हूँ आमिर जी से।
1: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: गाना तो निकाल दोगे क्या?
1: हाँ जी बताइए।
0: पिक्चर का नाम है जय करौली माँ।
1: जय करौली माँ,
0: हाँ इसका गाना लिखो आप।
1: हाँ जी,
0: कहानी कही है लेकिन जय करौली माँ पिक्चर का गाना है। तू कैसे आयो महल जनाने में,
1: तू कैसे आया महल जनाने में।
0: जी जय करौली माँ का है।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
0: धन्यवाद
1: जी, वेलकम सर।

0: बिल्कुल सुना रहे हैं। हाँ जी, नाम बताएं।
1: गुलशन।
0: गुलशन जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: ब्रह्मपुर सिटी।
0: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: कालिया है प्यार तेरा।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी फरमाइश का गाना।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताइए सर।
1: मनीष मीना,
0: कहाँ से बात कर रहे हैं सर?
1: गंगापुर सिटी।
0: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मासूम शर्मा का सार शूटर।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे। गंगापुर

0: जी नाम बताए सर।
1: जिला बाड़मेर राजस्थान से रूपचंद गोयल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें सर जी।
0: गोयल सर आपको भी नमस्कार, आपके सभी परिवार जन मित्र जनों सभी समस्त श्रोताओं को नमस्कार। बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज आप?
1: आज गीत सुनना है, पिक्चर का नाम है सावन को आने दो, उसका टाइटल सॉन्ग सुनना है।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश का।

0: करोगी नहीं। दीदी से ब्रेकअप हो गया तो नैन्सी को भी भूल गए हो। फोन नंबर चेंज किया, कॉल नहीं किया, कुछ नहीं।
1: ओके ओके ओके। अगर अगर तुम्हें मिलता तो वो याद आती। आई जस्ट वांटेड टू गेट अवे फ्रॉम एवरीथिंग फॉर अ व्हाइल। ओके नाउ आई विल टेक योर नंबर।
0: यू विल कॉल मी।
1: आई विल कॉल यू।
0: प्रॉमिस।
1: आई प्रॉमिस। द सेम नंबर राइट?
0: या। आर यू ओके नाउ? Okay, let's dance, guys.
1: Hey.
0: Let's dance.
1: Hey.
0: Go, go, go.
1: Hey, come on in.

दोस्तों वक्त हो चुका है 10:35 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: रोहित।
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हो? आदर्श नगर।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मेहंदी वाले हाथ वो तेरे।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करेगा।

0: हेलो।
1: हाँ जी मैम, क्या है आपका?
0: हाँ जी, योगेश जांगड़े बोले तरह 36 वर्ष।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: अभी वही बारिश वाला कोई प्यारा सा गीत सुनवा देंगे।
1: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश करिएगा।
0: धन्यवाद।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। 89.6 पे रेडियो डीएस, यहां हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस,
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का, में आपका

0: हेलो
1: हेलो बहन जी, नमस्कार जी।
0: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम तिलुखेड़ा से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: वो गाना है सावन को आने दो।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मेरी बहन।
0: वेलकम सर।

0: हेलो
1: सर, नमस्ते।
0: नमस्कार
1: सर, नाम क्या है आपका?
0: नाम बाबू खान।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी लखनऊ कोटे।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: उमर अस्पताल मुस्तफा, आपके जैसा कोई आया नहीं।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: दोस्तों वक्त हो चुका है 10:55 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है हर्ष एम हर्षिता की मालाखेड़ा गांव से। सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। हर
3: छोटे प्यार हो गया यार
4: भी हो गया भाई
3: एक दूसरे बीच में नहीं आना है
4: किस्मत अपनी अपनी

0: किसी कवि ने क्या खूब लिखा है, उकी बहु किसे ता पटा कोना, जिसका बल मापा।
1: हे रा रे रा, हे रा रे रा।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हे रा रे रा, हे रा रे रा।
3: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। और दोस्तों, वक्त हो गया आपके पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश का, जहां आपकी फरमाइश से बनती है हमारी आवाज। दोस्तों कहते हैं, हर गानों में एक भाव जज्बात होते हैं जो आपकी मन की गहराइयों को छू जाती है एक हसीन जज्बात के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज आपका ये खूबसूरत सफर आपके द्वारा भेजी गई फरमाइशों के साथ दिल से दिल तक।
1: हे रा रे रा, हे रा रे रा।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हे रा रे रा, हे रा रे रा।
4: 89.6 पे रेडियो DS।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
4: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS।
5: दीदी राधे राधे, और कैसे हो? दीदी आवाज कैसी आ रही है? थोड़ी आवाज बहुत कम। हाँ दीदी, बहुत कम आ रही, शाम को भी बहुत कम आ रही थी। हाँ अब सही आ रही है। नाम क्या है दीदी आपका?
6: मेरा नाम समता जाधव है, बाढ़ कला से बोल रही हूँ।
5: हाँ दीदी, कौन सा गाना सुनना चाहोगे? ओके दीदी, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: जी मेरा नाम सोहेल सेठी है मैडम।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: जी राजेश फुलने गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: जी मैडम आज गाना सुनना चाहते हैं, दिल बहल जाता है मेरा आपके आ जाने से।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
0: गोविंदा

0: हेलो
1: तो?
0: सर नमस्ते।
1: नमस्ते मैडम।
0: तो नाम क्या है आपका?
1: रफी खान, लोगों मस्जिद के पीछे से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: तुम जान हो किसी और की, तुम्हें चाहता है कोई।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हेलो
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: आरबी पूजा।
1: कहाँ से बात कर रहे हो आरबी जी? कहाँ से बात कर रहे हो?
0: सिंगापुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: रुक रुक वावा रुक।
1: ओके, गाना सुना रहे हैं।

0: तू यार दिल की रील में
1: हेलो
2: हेलो
1: सर नमस्ते
2: नमस्ते बहन जी नमस्ते।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: बहन जी मेरा नाम जगदीश राय गर्ग है।
1: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
2: मैं बहन जी बस स्टैंड मानसा पंजाब से बोल रहा हूँ जी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
2: बहन जी फिल्म है सुजाता,
1: गाने के बोल
2: आशा भोसले जी की आवाज में है गीत।
1: हाँ जी।
2: और उसके दो लाइनें मैं 93 बताता हूँ जी।
1: हाँ जी बताइए सर।
2: काली घट छाए मोरा जिया तरसाए, काली घट छाए मोरा जिया तरसाए।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद बहन जी, धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: सुशीला।
1: कहाँ से बात कर रहे?
0: करौली फाटक।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: पूछ जी को भजन जोड़ी मार राम लखन।
1: कौन सा सर? हेलो
2: हेलो।
1: हाँ जी, कौन सा भजन?
2: गणी लाडली जोड़ी रे मारा राम लखन सा बेटा री।
1: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश।
2: भैया ही सुना दे और जल्दी सुना दे, मैडम को आदेश है।
1: ओके सर।

0: हेलो
1: हेलो, हाँ जी, नाम क्या है आपका? शिवम, कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: महिला मित्र।

0: कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: हमें रोज तक किया था गुंडे।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिए।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: नक्श
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: करौली फाटक।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: जेड ब्लैक।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपको। सरप्राइज करना।

दोस्तों वक्त हो चुका है 11:38 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाई सिटी 9.6 रेडियो डीएस पर।

0: मेरा नाम मनमोहन सिंह।
1: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
0: सुल्लापुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: चुंगी चुंगी।
1: ओके सर, सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करिएगा ना। हेलो,

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: पिंकी।
0: कहाँ से बात कर रही
1: हूँ? गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: तेरी गैर मंदगी।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करेंगे।

0: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका? सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: आरव भूल बरसाओ।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो
1: हाँ जी मैम, क्या है आपका?
0: जी नमस्ते जी, पुष्करा से बोल रहा हूँ, जम्मू कश्मीर से।
1: सर नमस्ते, और सर कैसे हो?
0: बहुत दीदी कृपा है भगवान की, आप दीदियों की दुआएं आशीर्वाद है तो बहुत अच्छा हूँ मैं।
1: और सर बारिश वारिश कैसी हो रही है उधर?
0: अभी दीदी जी थोड़ी देर पहले बारिश हुई है, अभी थोड़ा मौसम ठीक है, धूप। हाँ जी जी, अब हमारे यहाँ तो ठंडा ही मौसम रहता है।
1: नहीं सर, किसी किसी जगह तो थोड़ी गर्मा ही रहती है भाई, उधर की साइड ही।
0: जो ये हमारा डोडा है ना, डोडा?
1: हाँ सर।
0: तो डोडा के ऊपर ऊपर इलाके जो है हमारे, तो इधर हम तो कोई, हम तो कम्बल ओढ़ कर ही सोते हैं रात को भी।
1: हाँ जी सर।
0: अभी तो मैंने स्वेटर लगाई है।
1: अच्छा
0: जी दीदी जी।
1: ओ सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे आज?
0: आज दीदी जी जीने की राह फिल्म का सुनना है
1: गाने।
0: एक बन जा रहा गाए जीने की राह, हम सब जीने वालों को जीने की राह, वो वाला गाना सुनना।
1: सुना रहे आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपके माध्यम से। अपने अंकल जी को प्रणाम करना चाहूंगा, हमारे अंकल जी है, हमारे अंकल जी केशव शर्मा जी, और हमारी आंटी जी सुषमा रानी जी, उनको भी मेरी तरफ से।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: नमस्ते दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके बच्चों के लिए आसान और मजेदार बन जाए? कक्षा 7वीं से 10वीं तक के बच्चों के लिए फाउंडेशन और स्टेट बोर्ड के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, तो डीएस साइंस एकेडमी आपकी सही मंजिल है। यहाँ मिलता है स्मार्ट टीचिंग मेथड, कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग, एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड फैकल्टी, रेगुलर पेरेंट्स अपडेट, मोटिवेशनल गाइडेंस, वीकली टेस्ट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव लेवल की पूरी तैयारी और हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। हमारा लक्ष्य सिर्फ मार्क्स बढ़ाना नहीं, बल्कि बच्चों की मजबूत नींव बनाना है। स्मॉल बैचेस में बेहतर ध्यान और व्यक्तिगत देखभाल। आज ही ज्वाइन इन करें और अपनी साइंस करियर की स्ट्रॉन्ग शुरुआत करें। कॉन्टैक्ट नाउ डीएस साइंस एकेडमी 8302611149 या 9413163680। डीएस साइंस एकेडमी, कॉन्सेप्ट क्लियर, फ्यूचर ब्राइट।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: काम कर ले तो मेरे दिल में आ जाना।
2: वो किसे सुना रहे आपकी फरमाइश पर ये गाना? हेलो,

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: खुशी।
1: कहाँ से बात कर रहे हो? मैम, आपको सीधी थे कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: सनम तेरी कसम।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं।

0: नाम क्या है आपका?
1: मनोज सक्सेना।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: नसिया कॉलोनी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: मैं मैडम उसका अपने राम चली गंगा मेली का।
0: गाने के पूर्व क्या है?
1: मैडम मैं कोई सा सुना दो, राम चली गंगा मेली।
0: तुम्हारे आपकी फरमाइश करिएगा ना रेडियो में कॉल करने के।

0: जी मैम, क्या है सर आपका?
1: शिवम गंगापुर।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: गोरे तेरे रंग से सटका जाए।
0: ओके।
2: रेडियो डीएस सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
3: डीएस साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111।
2: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। 89.6 पे रेडियो डीएस, यहां हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: डीएस साइंस एकेडमी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स, 99% से अधिक एक विद्यार्थी, 98% से अधिक 7 विद्यार्थी, 97% से अधिक 28 विद्यार्थी, 96% से अधिक 53 विद्यार्थी, 95% से अधिक 76 विद्यार्थी, 90% से अधिक 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। डीएस साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड, RBSE एंड CBSE, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, सिनोनिम ऑफ सक्सेस। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27, लिमिटेड सीट्स।
2: हेलो
3: हेलो,
2: हाँ जी मैम, क्या है आपका?
3: मेरा नाम अनुज है।
2: कहाँ से बात कर रहे हो?
3: मैं सिंधी कॉलोनी से कर रहा हूँ।
2: तो गाना सुनना चाहोगे
3: आप? ताली मार।
4: पतली पतली।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हेलो हेलो
3: हेलो
2: हाँ जी नमस्ते
3: नमस्ते मैम।
2: हाँ जी नाम क्या है आपका?
3: सोनल।
2: कहाँ से बात कर रहे हो?
3: गंगापुर सिटी से।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
3: मेरा ससुराल बड़ा पैसे वाला।
2: सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना?

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: बनाना।
1: कहाँ से बात कर रहे
0: हो? गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना?
0: तो ये मेरी दुनिया जान वे।

0: हेलो, आपकी नाम क्या है आपका?
1: कोमल,
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: चन्ना वे।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन

89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। 89.6 पे रेडियो डीएस, यहां हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6, शहर की धुन। 89.6

89.6 रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।
1: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DSIS अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।

0: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
1: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का, में आपका

0: साथ है।
1: DS Science Academy, where your dreams turn into reality. 12th Board Science 2026, शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावत और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, DS के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। DS साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी।
2: गुड आफ्टरनून दोस्तों, वक्त हो चुका है, 1:00 बज चुका है। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, अभी आपने मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम नहीं तरह ने 89.6 रेडियो डीएस।

0: झुमके कंगना 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।

0: 99.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं अर्चना बैरवा फ्रॉम गंगापुर सिटी, आप सभी का स्वागत है रेडियो डीएस 89.6 पर हमारा विशेष कार्यक्रम सुरक्षित कार्यस्थल, महिलाओं के सम्मान और आत्मविश्वास की पहचान। हमारे विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण सामाजिक विषय पर, जो है कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा। दोस्तों, आज महिलाएं हर क्षेत्र में सफलता की नई ऊंचाइयां छू रही है। वे केवल घर तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के अर्थव्यवस्था और विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। लेकिन जब कोई महिला घर से बाहर निकलकर काम करती है, तो सबसे जरूरी होता है उसका सुरक्षित महसूस करना, उसका सुरक्षित रहना। सुरक्षा और सम्मान का संबंध। सुरक्षा केवल शरीर की सुरक्षा नहीं होती, बल्कि सम्मान और आत्मविश्वास से भी जुड़ी होती है। यदि किसी महिला को अपने कार्यस्थल पर सम्मान नहीं मिलता, तो वह मानसिक रूप से असुरक्षित महसूस करने लगती है। हर महिला को महसूस होना चाहिए कि वो सुरक्षित है और वो अच्छे से मेहनत कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है बदलती दुनिया और नई चुनौतियाँ। आज कार्यस्थलों का स्वरूप बदल रहा है। रात की शिफ्ट, ऑनलाइन मीटिंग, यात्रा और डिजिटल कामकाज बढ़ने के साथ महिलाओं की चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में संस्थाओं को सुरक्षा के नए उपाय अपनाने होंगे। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव। कुछ जगहों पर महिलाओं को पुरुषों से कम अवसर दिए जाते हैं, उनकी क्षमता पर सवाल उठाए जाते हैं या उन्हें नेतृत्व की जिम्मेदारी देने में संकोच किया जाता है। यह भी एक प्रकार का मानसिक ही भेदभाव है। यौन उत्पीड़न एक गंभीर समस्या। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न महिलाओं के आत्मसम्मान से गहरी चोट पहुंचाता है। कई महिलाएं नौकरी खोने के डर से शिकायत नहीं करती हैं। हमें ऐसा माहौल बनाना होगा जहां महिलाएं बिना डर अपनी बात कर सके और बिना डर के अपना काम कर सके। कानून की जानकारी जरूरी। महिलाओं को अपने अधिकारों और कानूनी सुरक्षा की जानकारी होना जरूरी है। हर संस्था में आंतरिक शिकायत समिति होना अनिवार्य है। यदि किसी महिला के साथ गलत व्यवहार होता है, तो उसे चुप नहीं रहना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। आत्मरक्षा और जागरूकता। आज महिलाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण भी जरूर होना चाहिए। आत्मविश्वास और जागरूकता महिलाओं को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। कार्यस्थल पर सहयोग का महत्व। यदि सहकर्मी और अधिकारी सहयोगी हो, तो कार्यस्थल का माहौल सकारात्मक बनता है। महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार हर कर्मचारी की जिम्मेदारी है। काम और परिवार का संतुलन।

और परिवार का संतुलन। आज के समय में महिलाएं अपना काम तो संभालती है, साथ में अपना कामकाज, बाहरी कामकाज भी संभालती है, तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात

है कि वो सब कुछ संभाल पाती है एक ही समय में। कामकाजी महिलाओं पर घर और नौकरी दोनों की जिम्मेदारी होती है, ऐसे में परिवार का सहयोग बेहद जरूरी है। यदि परिवार साथ दे तो महिलाएं अधिक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकती है। सुरक्षित यात्रा भी जरूरी, कई महिलाएं देर रात तक काम करती हैं, ऐसे में सुरक्षित परिवहन और सुरक्षा व्यवस्था बहुत जरूरी है। संस्थाओं को महिला कर्मचारियों की यात्रा सुरक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। डिजिटल युग में सुरक्षा, ऑनलाइन मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम के दौर में साइबर सुरक्षा भी महत्वपूर्ण बन गई है। महिलाओं को अपनी निजी जानकारी सुरक्षित रखने और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने की जानकारी होनी चाहिए। उन्हें अपने फोन में या फिर लैपटॉप में पासवर्ड स्ट्रॉन्ग लगाना चाहिए ताकि वो ऑनलाइन जो साइबर क्राइम है उससे भी बच सके। समाज में सोच बदलने की जरूरत, दोस्तों महिलाओं की सुरक्षा केवल नियमों से नहीं आएगी, इसके लिए समाज की सोच बदलनी होगी। हमें महिलाओं को कमजोर नहीं बल्कि समान अधिकार वाले नागरिक के रूप में देखना होगा। धन्यवाद।

नमस्कार श्रोताओं, मैं अर्चना बैरवा फ्रॉम गंगापुर सिटी। आप सुन रहे हैं रेडियो DS 89.6 पर हमारा विशेष कार्यक्रम महिलाओं के कानूनी अधिकार। जागरूकता ही सबसे बड़ी शक्ति। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर महिला की सुरक्षा, सम्मान और आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ है। आज का विषय है महिलाओं के कानूनी अधिकार। दोस्तों, हमारे संविधान ने महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार दिए हैं, लेकिन कई बार जानकारी की कमी के कारण महिलाएं अपने अधिकार का सही उपयोग नहीं कर पाती। कानूनी अधिकार केवल किताबों तक सीमित नहीं होने चाहिए। हर महिलाओं को यह जानकारी होनी जरूरी है कि कानून उसकी सुरक्षा और सम्मान के लिए उसके साथ खड़ा है। पहला पॉइंट आता है समानता का अधिकार। भारत का संविधान महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार देता है। किसी भी महिला के साथ केवल उसके लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। हर महिला को शिक्षा, रोजगार और सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार है। घरेलू हिंसा से सुरक्षा। कई महिलाएं घरेलू हिंसा का सामना करती हैं, लेकिन डर या समाज की चिंता के कारण आवाज नहीं उठा पाती हैं। कानून महिलाओं को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हिंसा से सुरक्षा प्रदान करता है। यदि किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा की होती है तो वह पुलिस और कानूनी सहायता ले सकती है। कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकार। आज बड़ी संख्या में महिलाएं नौकरी कर रही हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण मिलना उनका अधिकार है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए विशेष कानून बनाए गए हैं। हर संस्था में शिकायत समिति होना जरूरी है। पति में अधिकार। आज बेटियों को भी अब बात आती है संपत्ति में अधिकार। आज बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में बराबरी का अधिकार प्राप्त है। यह महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। अब विवाह और तलाक से जुड़े क्या क्या अधिकार हैं? कानून महिलाओं को विवाह में सम्मान और सुरक्षा का अधिकार देता है। यदि किसी महिला के साथ अन्याय होता है तो वह कानूनी मदद लेकर अपने अधिकारों की रक्षा कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है दहेज कानून। दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनन अपराध है, फिर भी समाज में यह समस्या अब भी मौजूद है। हमें दहेज जैसी कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता फैलानी ही होगी। बाल विवाह रोकना जरूरी क्यों है? बाल विवाह कानूनन अपराध है। कम उम्र में शादी लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य को प्रभावित करती है। हर बेटी को पढ़ने और अपने सपने पूरे करने का पूरा पूरा अधिकार है। पुलिस में शिकायत का अधिकार। यदि किसी महिला के साथ अपराध होता है तो उसे पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का पूरा अधिकार है। महिलाओं के लिए हेल्पलाइन और महिला पुलिस स्टेशन जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध है। महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 1098 भी दिया गया है, ताकि महिलाएं उन पर संपर्क करें और जब भी उनको परेशानी हो। मुफ्त कानूनी सहायता। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता भी दी जाती है, लेकिन कई महिलाएं इसकी जानकारी ना होने के कारण मदद नहीं ले पाती। दोस्तों, अधिकार तभी मजबूत बनते हैं जब व्यक्ति उनके प्रति जागरूक हो। यदि महिलाएं अपने अधिकारों को जानेगी तभी वे अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकेगी। परिवार और समाज की जिम्मेदारी। आज के समय में महिलाओं के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। महिलाओं के अधिकारों को का सम्मान केवल कानून की जिम्मेदारी नहीं है। परिवार और समाज को भी महिलाओं के साथ सम्मान और सम्मानजनक व्यवहार करना होगा। शिक्षा और आत्मविश्वास। शिक्षा महिलाओं को अपने अधिकार समझने की ताकत देती है। एक शिक्षित महिला गलत हो और सही में फर्क समझती है और अपने लिए आवाज उठा सकती है। धन्यवाद।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: डीएस साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026, शानदार नतीजे। टॉपर मानव शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी।

की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। DS साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी नियर सैनिक नगर एन नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
3: DS Science Academy, where your dreams turn into reality. 12th Board Science 2026, शानदार नतीजे। टॉपर मानव शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, DS के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। DS साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111।
4: तो वक्त हो चुका है 2 बच्चों के। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त RJ पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नहे तराने। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम भूली विसरी याद 89.6 रेडियो DS पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM
1: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। 89.6 पे रेडियो DS, यहां पे

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
3: डीएस साइंस एकेडमी वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानव शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी FCI गोडाउन रोड गंगापुर सिटी नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 800-55-98-377। इसके अलावा 9983413111।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: दोस्तों वक्त हो चुका है 3 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टोन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्य क्रम भूली विसरी यादे। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्य क्रम बैक टू बैक गाने का 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

दोस्तों वक्त हो चुका है 3:53 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल कर अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं, हम आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा करेंगे 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
3: डीएस साइंस एकेडमी वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी FCI गोडाउन रोड गंगापुर सिटी नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
3: गुड इवनिंग दोस्तों, वक्त हो चुका है 4:00। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजी पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का। थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम आपका मनपसंद राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर।

वक्त हो चुका है 4:01 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल करें और अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग नंबर है 6378024475। पुनः प्रयास करें 6378024475 पर कॉल करें और अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
4: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता,
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
4: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है
0: 89.6 रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। 89.6 पे रेडियो डीएस यहां हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
5: दोस्तों वक्त हो चुका है 4:29 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 39 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।
6: नमस्कार
5: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
6: जी मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति इस राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आप कैसी हैं?
5: सर मैं ठीक हूँ, और आप कैसे हो?
6: बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ, रेडियो सुनते रहता हूँ, अच्छा लगता है। दीदी आपको बताना चाहता हूँ कि आपके रेडियो डीएस की साउंड क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में। और जो लोक गीत राजस्थानी सुनाते हैं 4 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, वो बहुत अच्छे लगते हैं।
5: धन्यवाद सर।
6: आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, गाने के बोल हैं सोचो ना जरा सोचो ना,
5: सोचो ना जरा सोचो ना।
6: जी
5: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
6: जी। हृदय धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो बहन जी, नमस्कार जी।
0: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पिल्लूखेड़ा से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: फिल्म का नाम है जाने मन और गाने की बोल है आएगी आएगी आएगी, इसी को हमारी याद आएगी।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। रोजाना रेडियो डीएक्स में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मेरी बहन।
0: वेलकम सर।

0: सर नमस्ते, नाम क्या है आपका?
1: नमस्ते जी, चौधरी निवेदन कर रहा हूँ मालवी जी से।
0: फिर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: गाना तो बढ़िया लाए हैं, सुबह का प्रसारण बहुत बढ़िया था आपका।
0: हाँ जी, आपका बताओ कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: अच्छा गाना लाए रहिए जी, इसको समर्पित है। लिखो।
0: हाँ जी बताइए।
1: पायल चांदी की।
0: पायल चांदी की?
1: जी जी।
0: ओके सर, सुधार है आपकी फरमाइश पर। यह गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
0: यू वेलकम सर।

0: नमस्ते
1: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: चंडी राम गुजर बोल रहा हूँ, नाम से।
1: और हो जाता है बताइए सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: गाने के बोले अरे शेरी बाबू हमें माफी दे दे तू,
1: बाबू हमें माफी दे दे।
0: हाँ जी जी,
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यू वेलकम सर।

0: हेलो।
1: हाँ जी सर, नमस्ते। नाम क्या है आपका?
0: नमस्कार, नाम बाबू खान।
1: कहाँ से बात कर रहे?
0: गंगा बुद्धि नगेरे को।
1: कौन सा गाना सुनना चाहिए थे?
0: रुक जा रात ठहर जा चंदा।
1: कौन सा सर?
0: रुक जा रात ठहर जा चंदा।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: हेलो, रेडियो स्टेशन से बात कर।
1: हाँ जी,
0: मेरा ये गाना है।
1: नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम
1: जी?
0: मेरा नाम सैंडी मीना।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: मैं गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: मैं मासूम शर्मा का, वो जितने भी से बैठे हैं मेरी गेला गाड़ी।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। हेलो।

0: हेलो
1: जी, नाम क्या है आपका?
0: गुलशन।
1: कहाँ से बात कर रही
0: हूँ? गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: आज है सगाई, सुन लड़की के भाई।
1: ओके, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिए।

0: कला देवी।
1: कहाँ से बात कर रही?
0: मिर्जापुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: गाना अब दुआ होंगे खाना खाओगे।
1: कौन सा?
0: हम दुआ होंगे खाना खाओगे फिर भी याद करेंगे मतलब।

0: की थी।
1: आर्यन
2: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: बंगापुर सिटी।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: लौ परते हरियाणा के।
2: सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: जी नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम रोहन शर्मा।
0: कहाँ से बात कर रही?
1: आदर्श नगर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: हेलो,
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: सही आ रहा।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: अनस खान।
0: कहाँ से बात कर रहे थे?
1: यहाँ माधोपुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: यारी सॉन्ग।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करेगा।

0: बताइए नाम क्या है आपका?
1: विष्णु।
0: कहाँ से बात कर रही?
1: बिनापुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: कर हर मैदान फतेह।
0: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश करेगा।

0: रात खेल जा चंदा।
1: क्या आपका?
2: मल्लिका।
1: कहाँ से बात कर रही?
2: रेलवे कॉलोनी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
2: हम तुम्हारे तुम्हारे सनम।
1: ओके, हम सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: निकिता वर्मा, गंगापुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: अंगूरी वाला।
0: बिल्कुल सुना।

0: सुर में गाना सीखिए पाधानिसा ऐप के साथ।
1: AM 89.6 रेडियो DS जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। 89.6 पे रेडियो DS यहां हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
3: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।
1: 89.6 रेडियो DS जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
4: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का में आप।

0: फॉगी फॉगी मौसम है भैया, धुंध है, धुंध है ओसी ओस। और इस वक्त गंगापुर सिटी में मैं अगर तापमान की बात, वेदर की बात, टेम्परेचर की बात ना ही करूं तो बेहतर है। तो किसकी बात करूं, बात करूंगा इस वक्त गाने की। मैं खिलाड़ी गाना सुना आपने उदित नारायण की आवाज में, अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में, लिरिक्स लिखा है माया गोविंद ने, कॉम्पोजिशन अनु मलिक ने, लेकिन इस गाने को रिक्रिएट किया तनिष्क बागची ने। और ठंड बहुत है भैया, बातें कम करूंगा, गाने सुनाऊंगा अगले 3 बैक टू बैक गाने सिर्फ आपके लिए।
1: गंगापुर सिटी की धड़कन, रेडियो डीएस।

0: देखो, एक होता है सही समय, एक होता है गलत समय, और एक हो रहा है अभी का समय जो 9:15 से ऊपर है या नीचे मैं नहीं बताऊंगा, खुद से अपनी घड़ी चेक करो। इससे पहले आपने गाना सुना क्या लोगे तुम, बी प्राक की आवाज में। लिरिक्स लिखा था जानी ने और कॉम्पोजिशन भी जानी ने, लेकिन बी प्राक। जब फिल्म एनिमल का ट्रेलर आया था तो उसमें एक बहुत ही शानदार सीन था जहाँ पे रणबीर कपूर और अनिल कपूर वो एक्ट कर रहे होते, जहाँ रणबीर कपूर कहते कि मैं आपकी एक्टिंग करूंगा, आप पापा हो मेरे, और फिर वो डायलॉग आता है सुनाई दे रहा है बहरा नहीं हूं मैं। तो जब भी मैं बी प्राक के गाने सुनता हूँ मेरे को वो सीन याद आता है कि सुनाई दे रहा है। इसी बात पे चलो तीन गाने बैक टू बैक आपके।
1: गंगापुर सिटी की धरती।

0: जसमीन नौटियाल असीस कौर की आवाज में आपने गाना सुना राता लंबिया। लिरिक्स और कॉम्पोजिशन तनिष्क बागची भैया ने लिखा है। वैसे हाँ फिलहाल मेरा समय हो चुका है जाने का, टाइम टू गो। कल मिलेंगे सुबह 9 से 10 पर। आप कहीं मत जाओ, बने रहो हमारे साथ, गाने सुनो 89.6 रेडियो DSP
1: गंगापुर सिटी की धड़कन।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: आपने कभी गौर किया है हमारे बड़े बूढ़े कितने खुश रहा करते थे और हम हर छोटी छोटी बात पे परेशान हो जाते हैं। मैं हूँ आरजे खुशी। आप ऑब्जर्व करेंगे ना तो आपको दिखेगा कि उनके जीवन में कुछ ऐसी चीजें थी जो वो डेली करते थे, जैसे कि कथाएं सुनना, और उन कथाओं से वो बहुत कुछ सीखते थे। पहले तो ये भी होता था कि परिवार के सभी सदस्य दिन में आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा बैठ जाया करते थे और प्रभु के ऊपर बातें किया करते थे। आज के जमाने में ये सब बोरिंग माना जाता है, लेकिन एक बात बताओ, अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया ना तो एक तो आप सीखेंगे भी बहुत कुछ और दूसरा एक दूसरे को वक्त देना शुरू करेंगे, जो कि आज हम लोगों के लिए दे पाना बहुत मुश्किल है। थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है शुरुआत में, लेकिन अगर आपने इसको करना शुरू कर दिया तो आपको खुद को बहुत अच्छा लगने लगेगा। तो आज सुबह की शुरुआत इसी सोच से कि हम अपनों को अपने करीब लाने की कोशिश करेंगे। मैं हूँ आरजे खुशी, लौट कर आती हूँ थोड़ी देर में।
0: 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: परीक्षा का समय आ गया है और इस वक्त पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं करता। मैं हूँ आरजे खुशी। जब मैं स्कूल में थी ना, तो इस वक्त मुझे बहुत ज्यादा नींद आया करती थी, और मैं समझ सकती हूँ उन सभी स्टूडेंट्स की बात जो कहते हैं कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा नींद आती है, बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता है। देखो, ये बात तो ठीक है कि सर्दियों में इस टाइम पे बहुत नींद आती है, बहुत आलस आता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जिस तरीके से हम खुद को संभाल पाए। तो सबसे पहली चीज ये कि कोशिश करें कि सूरज में जरूर बैठे। कई बार ये विटामिन डी की कमी से भी हो जाता है, तो अगर आप डेली एक्सरसाइज करेंगे, डेली सूरज के नीचे बैठेंगे, तो आधी प्रॉब्लम यही सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी आपको आलस बहुत ज्यादा आता है, तो दो चीजें हैं जो आपको जरूर करनी चाहिए। एक तो दिन के वक्त आपको नहीं सोना है, और दूसरी चीज, अगर आप ज्यादा खाना खा रहे हैं तो भी ये परेशानी आपको हो सकती है। और एक इससे भी जरूरी चीज, हम लोग सर्दियों में पानी पीना भूल जाते हैं। अगर आपने इतनी चीजें कर ली ना, तो आपको बिल्कुल भी आलस नहीं आएगा सर्दियों में। मैं हूँ आरजे खुशी, लौट कर आती हूँ थोड़ी देर में।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: सर्दियां पसंद तो सबको होती है क्योंकि अच्छा अच्छा खाने को मिलता है, लेकिन इन्हीं सर्दियों से लोग परेशान होते हैं डैंड्रफ की वजह से। मैं हूं आरजी खुशी। अगर आप भी परेशान हो चुके हैं ना डैंड्रफ से, तो कुछ चीजें जो आप अपना सकते हैं। देखिए, आंवला, जिसके बारे में मैं बार बार बात करती हूँ, वो इसलिए ताकि आप आंवले को अपना लें अपने जीवन में। आंवले का जो तेल है वो पूरी तरीके से डैंड्रफ हटाने में मदद करता है। एक और चीज, हम लोग सर्दियों में क्या नहाना थोड़ा सा कम कर देते हैं, और सर्द होके नहाना तो बहुत ही डिफिकल्ट लगता है। लेकिन अगर आपने वॉश बार बार नहीं किया ना सर को, तो डैंड्रफ जमा रह जाएगा। इसलिए कहा जाता है एक दिन छोड़ के एक दिन आपको सर धोना ही चाहिए सर्दियों में। एक और बात, हम लोग नहाने के लिए सर्दियों में गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गर्म पानी हम जैसे ही अपने सर में डालते हैं ना, तो ये डैंड्रफ को बढ़ावा देता है। इसलिए सर में अगर आपको पानी डालना है तो गुनगुना पानी लें, एकदम गर्म पानी कभी भी सर में ना डालें। इन टिप्स को फॉलो करें और सर्दियों को खुल के एंजॉय करें। मिलूंगी कल इसी पते पर, इसी समय पर। मैं हूँ आरजे खुशी।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: सुप्रभात, नए दिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 89.6 डीएस एफएम पे। मैं तनीषा आपके साथ। चलिए आज आपके दिन की शुरुआत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एक बात के साथ करती हूँ। वो कहते हैं कि इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। उनका कहना था कि व्यक्ति को सपने देखने चाहिए, कुछ नया करने की उमंग हमेशा बनी रहनी चाहिए। अगर हम सपने नहीं देखेंगे तो जीवन में प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो सपने पूरे करने के लिए सपने जरूर देखना। ऐसे ही उनकी कुछ बात के साथ आपसे मिलूंगी 89.6 DSFM पे। मैं तनीषा।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बड़ी अच्छी बात कही है जो आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगी। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पर ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय हो तुम। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। ऐसी बातों के साथ 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।
2: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।

0: 99.6 पे रेडियो डीएस।
1: हमारी आदत होती है ना कि हम गलतियों को पकड़ के बैठ जाते हैं, भूल नहीं पाते हैं। मन में 100 चीजें चलती रहती है, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। पर इंसान से ही तो गलती होती है ना। जब भी ऐसा लगे तो ये चीज सोचना कि अगर वो इंसान ही नहीं रहा तो गलतियों का क्या करोगे, अफसोस होगा क्या नाराज रहने का। देखना, जवाब हाँ ही आएगा। तो अगर दिल से जवाब हाँ आए तो माफ कर देना। कभी कभी लेट गो करना, चीजों को जाने देना बेहतर होता है। ऐसी ही मोटिवेशनल बातों के साथ आपसे फिर मिलूंगी 89.6 DSFM पे। मैं तनीषा।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ सफरनामे में आपका स्वागत है। बॉलीवुड का वो ट्रेजेडी किंग जिसे पर्दे पर डायलॉग बोलते देख दर्शक जैसे सब कुछ भूल जाते थे। जी हाँ, यहाँ हम दिलीप कुमार की बात कर रहे हैं। उन जैसा कलाकार फिल्म जगत में ना कभी हुआ है ना कभी होगा। उन्होंने अपनी हर भूमिका को इतनी खूबसूरती से दर्शकों के समक्ष पेश किया कि वो हर उम्र के लोगों के पसंदीदा बन गए। दिलीप साहब वो नाम है जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। दिलीप साहब ने अपने लंबे करियर में इतना काम किया है कि उनसे जुड़े कई किस्से आज भी अक्सर सुनने को मिल जाते हैं। ये बात तो कई लोग जानते ही होंगे कि दिलीप साहब का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था, लेकिन फिल्मों में कदम रखने से पहले ही उनका नाम बदल दिया गया और वो दुनिया भर में इसी नाम से मशहूर हुए। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। दिलीप कुमार के पिता फल बेचने का कारोबार करते थे। कहते हैं कि एक बार उनके पिता से किसी बात को लेकर बहस हो गई थी। वो मुंबई से भागकर पुणे चले गए। पुणे की एक आर्मी कैंटीन में उन्होंने सैंडविच बेचने का काम किया, लेकिन फिर कुछ ही समय के बाद वो अपने परिवार के पास वापस मुंबई आ गए। इस दौरान एक दोस्त के जरिए उनकी मुलाकात मुंबई टॉकीज के मालकिन देविका रानी से हुई। देविका ने दिलीप साहब को देखा और उन्हें अपने ही पास नौकरी दे दी। दिलीप साहब ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि एक दिन देविका रानी ने दिलीप साहब की सूरत को देखकर पूछा कि क्या वो फिल्मों में एक्टिंग करना चाहते हैं। हालांकि दिलीप कुमार ने तो अभिनय सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि उन्हें चार फिगर में सैलरी बहुत आकर्षित कर रही थी। वहीं उनके पिता को एक्टिंग करना सिर्फ नौटंकी लगता था। दूसरी ओर देविका रानी पूरा मन बना चुकी थी कि वो यूसुफ खान को अपनी फिल्म में लॉन्च करेंगी। वो चाहती थी कि यूसुफ को कोई दूसरा नाम दिया जाए जो दर्शकों से कनेक्ट कर सके। ऐसे में उन्होंने दिलीप कुमार नाम का विचार किया। वहीं यूसुफ खान को डर था कि अगर उनके पिता को एक्टिंग वाली बात पता चली तो बहुत मार पड़ने वाली है। ऐसे में पर्दे पर नाम बदलना ही ठीक रहेगा। उसके बाद उन्हें दिलीप कुमार नाम से 1944 में फिल्म ज्वार भाटा में लॉन्च किया गया। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: लागा गोरी गुजरिया से

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS89.6 शहर की धुन।
1: अब आपको दिग्गज एक्टर दिलीप कुमार और सायरा बानू की इंटरेस्टिंग लव स्टोरी के बारे में बताने जा रही हूँ। इस कपल के रिश्ते में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन दोनों एक दूसरे को काफी प्यार करते थे। सायरा बानू और दिलीप कुमार की 55 साल की शादी हर किसी के लिए मिसाल है। 11 अक्टूबर का दिन दिलीप कुमार के लिए काफी खास दिन था। 22 साल की कम उम्र में ही सायरा बानू ने दिलीप कुमार के संग शादी रचा ली थी। जब सायरा 22 की थी और दिलीप कुमार 44 साल के थे, दिलीप ने प्यार के आगे उम्र को नहीं देखा। एक इंटरव्यू के दौरान स्वर्गीय दिलीप कुमार से जब पूछा गया था कि आपने कब और कैसे प्रपोज किया था, तो दिलीप कुमार बताते हैं कि एक बार वो बाहर मिले थे, तब उन्हें लगातार उनकी एक्स पार्टनर के फोन आ रहे थे, क्योंकि उनका ताजा ही ब्रेकअप हुआ था और इससे सायरा परेशान हो रही थी। ऐसे में घर लौटते समय समुद्र किनारे गाड़ी खड़ी करके उन्होंने सायरा की आंखों में देखते हुए कहा कि क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी। उनकी इस बात को सुनते हुए सायरा ने गुस्से में कहा कि आपने मुझसे पहले कितने लोगों को ये बात कही है। ऐसे में पहली बार था जब दिलीप कुमार को गुस्सा नहीं आया था। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम बहुत प्यारी हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इसके बाद सायरा बानो मुस्कुराने लगती है। इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद दिलीप कुमार ने किया है। आज के लिए सफरनामे में इतना ही, फिर आपसे मिलूंगी यहीं पे 89.6 DSFM पे। मैं तनीषा आपके साथ।

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन
1: 89.6 DS FM पे मैं तनिषा आपके साथ सफरनामे में हम आज बात करने जा रहे हैं अभिनेत्री नूतन की। अभिनेत्री नूतन किसी परिचय की मोहताज नहीं है, उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं। 89.6 DS FM पे मैं तनिषा आपके साथ।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। फिल्म छबीली का निर्माण नूतन की माँ शुभ्रा समर्था ने ही किया था और इसमें उन्होंने अपनी दोनों बेटियों यानी नूतन और तनुजा को लिया था। दोनों बहनों की साथ में ये आखिरी फिल्म थी। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी के कई स्टेज शो में नूतन जी ने गाने गाए हैं। फिल्म चलिया का वो गीत तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, ये गीत नूतन जी की आवाज में ही रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन बाद में उन्होंने लता जी की आवाज में रिकॉर्ड किया। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: नूतन जी की अदाकारी के तिलस्म को अगर जानना है तो उनकी अभिनीत फिल्में बंदिनी, सीमा, सुजाता देखिए। नूतन के करियर में फिल्म सीमा सबसे बड़ा माइलस्टोन साबित हुई है। आमिया चक्रवर्ती के निर्देशन में बनी इस फिल्म में उनके साथ बलराज सहानी जी और शोभा खोटे थे। 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।

0: नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: DSFM पे मैं तनिषा आपके साथ, देवानंद जी के साथ पेइंग गेस्ट, राज कपूर जी के साथ अनाड़ी, सुनील दत्त के साथ सुजाता, दिलीप कुमार के साथ कर्मा जैसे कई बेहतरीन फिल्में नूतन जी ने दी हैं। 89.6 DSFM पर इन फिल्मों के प्यारे प्यारे गीत पेश है खास आपके लिए।
2: 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: अफसाने, कुछ मौसम है दीवाना, कुछ तुम भी हो दीवाने।
1: जरा सुनना जाने तमन्ना, ओ जरा सुनना जाने तमन्ना, इतना तो सोच।

0: एक दिल एक जान है हम तुम, जमाना क्या कहेगा।
1: हा हा हा छोड़ दो आजकल, जमाना क्या कहेगा।
0: हा हा हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा।
1: जमाना क्या कहेगा,
0: दीवाना क्या कहेगा।
2: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: लंबे समय तक सिनेमा में राज करने वाली अभिनेत्री, सशक्त और प्रभावशाली किरदारों से सबका मन मोह लेने वाली एक्ट्रेस को 89.6 डीएसएफएम का प्यार भरा सलाम। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे यहीं पे यानी 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ।